ने अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखे ने, जिदे विच कथित नीट पेपर लीक नू लैके संसद दे वल जिहड़ा CJP दी अगवाई हेठ 20 जुलाई दे रोस मार्च दे दौरान विद्यार्थियों ते होई पुलिस कारवाई दे बारे सरकार तों जवाब दी जिहड़ी मंग कीती गई है। हंगामे दे विचकार सरकार ने लोक सभा दे विच पब्लिक जिहड़ा एग्जामीनेशन प्रीवेंशन आफ एनफेयर मीनस अमेंडमेंट बिल जिहड़ा पेश कीता है। लोक सभा नू जिहड़ा कारवाई शुरू होने तो तुरंत बाद पहला 12 बजे तक मुलतवी जिहड़ा कर दिता गया। जिवें ही सदन जुड़िया जिहड़े स्पीकर ओम बिरला ने कामनवैल्थ गेम्स दे विच तमगा जितण वाले भारतीय अथलीटां नू वधाई दित्ती। इस तो तुरंत बाद विरोध जिहड़ा होना शुरू हो गया। विरोधी धिर दे मैंबरां ने नारेबाजी करनी शुरू कीती। बिरला ने उन्हां नू याद दवाया कि प्रश्न काल सवाल पुछण दे लई हुंदा है, ना कि होर मुद्दे उठाउण दे लई। मैंबरां नू सदन दे विच विघन ना पाउण दी चेतावनी दिंदिआं उन्हां ने जिहड़ा कारवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दित्ती। जदों सदन की कारवाई दुबारा शुरू हुई तां प्रदर्शन जारी रहे, जिसके कारण दोपहर 2 बजे तक लई मुल जिहड़ा मुड़ के मुलतवी करना पै गया। राज्यसभा दे विच भी इसे मुद्दे नू लैके वार वार हंगामा होया तां इस नू दुपहर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दिता गया। कथित नीट पेपर लीक नू लैके 20 जुलाई नू मानसून सैशन शुरू होने तों बाद दोवां सदनां दे विच वार वार हंगामा होया ते सोमवार लगातार 6वां दिन सी जदों लोक सभा प्रश्न काल नहीं लै सकी है। हालात इही ने रहने ने जी, जो मर्जी कर लो। इस तों पहलां सरकार ने प्रश्न पत्र लीक अते प्रीख्या दे विच अनुसूचित जिहड़ा अनुचित साधना की वरतों दे नाल जुड़े अपराधां दे विरुद्ध सख्त उपबंध वाला बिल सोमवार नूं लोक सभा दे विच पेश कीता है। प्रधानमंत्री दफ्तर दे विच राजमंत्री जतेंद्र सिंह दे ने जिहड़ा सदन दे विच विरोधी धिर दे मैंबरां दे हंगामे दे विच विचकार लोक प्रीख्या सोध बिल 226 पेश कीता है। विरोधी धिर दे मैंबर दिल्ली दे विच 20 जुलाई नूं प्रदर्शनकारी विरोधी विद्यार्थियों दे उत्ते पुलिस दी कारवाई दे जवाबदेही तय करन अते गृह मंत्री अमित शाह दे जवाब दी मंग कर रहे ने ते हंगामा कर रहे सन। लोक सभा मैंबरां नूं वंडी गई बिल दी कापी दे अनुसार प्रीख्या दे विच प्रश्न पत्र लीक करन जां अनुचित स्थानां दी वरतों करन वाले व्यक्तियों नूं घट्टो घट 5 साल ते वध तों वध 10 साल तक दी कैद 50 लाख रुपए तक दे जुर्माने दी सजा हो सकदी है। ते अगली खबर वल नूं वधीए दोस्तो, गल करदे आं कैप्टन सौरभ कालिया दे परिवार दी। 27 साल दे बाद भी इंसाफ दी उड़ीक दे विच ने। सर्वोच्च अदालत दे विच सुनवाई ना होण करके परिवार निराश है, पर रब दे उत्ते कहिंदे अजे भी भरोसा कायम है। कारगिल युद्ध दे 27 साल बीत जाण तों बाद भी देश दे लई अपनी जान कुरबान करन वाले पहले भारतीय फौजी अफसरां दे विचों इक कैप्टन सौरभ कालिया दा जिहड़ा परिवार अजे भी इंसाफ दी राह जिहड़ा तक रिहा। पाकिस्तानी फौज दे वल्लों कैप्टन कालिया ते उन्हां दे 5 साथी जवानां दी कथित तसीहे दे के कीतियां गईयां हत्या दे मामले च जवाबदेही दी मंग करदी पटीशन देश दी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट दे विच लंबत पई है, जिहदी पिछली लगभग 6 सालां तों कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कैप्टन कालिया दे पिता डॉक्टर NK कालिया ने अज इत्थे दी ट्रिब्यून नाल गल्लबात करदिआं कानूनी चाराजोई दे विच हो रहे देरी ते डूंघे दुख अते निराशा दा जरा प्रगटावा कीता है। उन्हां कहा कि परिवार ने इंसाफ दी आस दे विच 2 दहाकियां तों वध दा समां लंघाता, पर हाले तक कुछ नहीं होया। इस लंबे इंतजार दे बावजूद सच अते इंसाफ दे विच उन्हां दा विश्वास अजे भी कहिंदे अटल है। डॉक्टर कालिया अनुसार परिवार दे वकील ने अपील 226 दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच इक नवीं अर्जी दायर करके मामले दी जल्द सुनवाई करन दी बेनती कीती सी, पर इस दे बावजूद केस अजे तक जिहड़ा अदालत दे सामने सुनवाई दे लई नहीं लग सकिया। भावुक हुंदिआं डॉक्टर कालिया ने कहा कि लगातार हो रही देरी ने कानूनी प्रणाली राही इंसाफ मिलन दीआं उम्मीदां नूं ढा लाई है ते उन्हां दुखी मन दे नाल कहा कि जेकर इस दुनिया दे विच इंसाफ ना मिलिया तां मेरे शहीद पुत नूं परमात्मा दी दरगाह दे विच इंसाफ जरूर मिल जाएगा। दूसरे पासे इदां 27 साल तों उह लोक रोलदे ने जिन्हां ने देश दी सेवा कीती आ, अपने पुत वार दित्ते, सारा कुछ कर दित्ता, पर दूसरे पासे बंबे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे आ, कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होणा जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात ले

0: बिल्कुल बिल्कुल जी, इसी करके। पर इन्हां ने जाके उत्थे एक बार ये नहीं, ना कोई सेंटर नाल कोई गलबात कीती है, ना
1: जी
0: बच्चे नु कोई इन्हां ने कोड कीता है भी हाँ असीं भाई थोड़ा कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उत्थे हुण बच्चे पढ़न जांदे ने, हुण देखो जे पढ़ाई दा है, जे पढ़ाई नु छड के ओह बच्चे सियासत करनगे या
1: जी
0: इन्हां दा खिलाफ खड़े होणगे, ओह पढ़नगे की करनगे जी,
1: बिल्कुल है जी,
0: हुण दे फ्यूचर दा
1: बिल्कुल।
0: खराब कर रहे हैं जी ये।
1: और हर जगह धर्म जां वो पॉलिटिक्स बाड़ी जा रही है ना जी, वही बैर विरोध खड़ा किया जा रहा है। वो कॉलेजां स्कूलां दे विच आही जिहड़ा कह सकते हैं कि पुरानियां परंपरावां वो फिर बाड़न लगे हुए, वो चीजां इशू बन रहे ने
0: पढ़न लगे हुए हैं जी। हाँ जी
1: जी
0: हाँ जी हाँ जी, ये मतलब फ्री यात्रा चला रही है,
1: जी
0: ओदी हाले जरूरत मेनू नहीं लगता भी हैगी है जी। मैं
1: जी
0: मेनू नहीं पता भी होर दुनिया की सोच रही होगी, पर जितना मेनू लगता ओदी लोड़ नहीं। जेडे आपा उत्थे पैसे खराब कर रहे हैं, तुसी अपनी
1: जी
0: सिक्ख्या तंत्र दे विच क्यों नहीं लाउंदे
1: ओ
0: हैगे
1: भाई
0: जी।
1: जी, ओ हर किसी दा धर्म निज होना चाहिए, सरकारां दे फर्ज थोड़ी बनदे कि यात्रावां करवाउंदे, फिर जिहड़े मन्नणा
0: हाँ
1: जो
0: बिल्कुल
1: मन्नणा
0: जी
1: मन्नी
0: बिल्कुल,
1: जावे।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ बिल्कुल जी, सरकारां दा काम थोड़ी है, सरकार दा
1: जी
0: काम है अपने अपने जिहदे जिहदे जो सूबे ने जो जिले ने जिहदे जां मुख मंत्री पूरे पंजाब दा बैठा उन्हूं, ये सिक्ख्या
1: बिल्कुल है
0: मंत्री हरजोत मैंस नूं बणाया होया, इहनूं चाहीदा भी मैं केड़े काम बैठ मैनूं केड़े काम लई मंत्री बणाया ते मैं कर की रहा। ते
1: बिल्कुल
0: मतलब ये है कि सिक्ख्या मंत्री ते कोट कर रहे हैं मतलब सफाई कर्मचारियों नूं, इहनूं पुछो भी थोड़ा क्राइटेरिया हैगा जी ओ।
1: नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी
0: पंजाब साडा सिक्ख्या विच नंबर वन है जी, मैनूं
1: जी
0: दसो जी सरकारी मतलब सरकारी स्कूल तां बंद होण दी कगार ते ने, नवां कोई बनया नहीं,
1: एंट्री
0: ना
1: बच्चों
0: नवां
1: की
0: कोई
1: घट गई
0: कॉलेज है,
1: है
0: ना कोई नवीं भर्ती हुई, नंबर वन केड़े हिसाब नाल बणाउंदे ने
1: जी।
0: जी।
1: आप पिछे देखो, आप ही घिर गए मुख्य मंत्री साहब के, वो कुड़ी कहिंदी जदों मैं प्लस टू च सी उदों बायो दा मेरा प्रोफेसर है नहीं सी, ते जदों मैं प्लस
0: हाँ
1: टू च
0: जी
1: हो गई तां कैमिस्ट्री दा है नहीं सी जी। कहिंदे जी 1032 असीं
0: तो
1: ला रहे हैं जी, कदों लोणे हैं वो, 4.5 साल हो गए तुहानू।
0: तेनू ये तो बेशरम बैठे ने जी, बिल्कुल बेशरम बैठे ने। आज सीचेवाल साहब जी ने कहा भी मैनू गणमैन की लोड़ नहीं, तू सीचेवाल से ही आ
1: जी
0: जाओ जी। अपना मतलब सियासत तो पहला उन्हों का
1: जी
0: अहुदा की सी, लोग उन्होंने किन्नी रिस्पेक्ट दे,
1: बिल्कुल है जी, बिल्कुल
0: ठीक है जी। हुण जादे पार्टी चाहे ने, मैं नहीं कहता भी चलो भी थोड़े सारा कुछ थोड़े हाथ च है, तुसी भी सारा कुछ कर सकते, जे नहीं कर
1: जी।
0: सकते एटलीस्ट तुसी जिथे थोड़ी गवर्नमेंट गलत है तुसी वो अपना असेंबली च
1: रिजाइन
0: जाने
1: दे
0: या
1: के
0: किते भी
1: परे
0: जाने
1: होवो,
0: है।
1: लोग तुहानू
0: पहली गल तो
1: ओदां ही
0: असेंबली च
1: हत्थां ते
0: तुसी
1: चक्की
0: अटेंड
1: फिरदे
0: नहीं
1: है।
0: होने।
1: बिल्कुल है भाई, नहीं भाई गलत हो रहा, गल नहीं बड़ी।
0: हाँ जी हाँ, इन्हां दे
1: जी
0: इन्हां नालों तो फिर भी मैं किते ना मतलब विजय कुंवर प्रताप नूं बहुत वधिया समझ है,
1: जी
0: जिहड़े मतलब पंजाब नूं लैके अपनी जमीर नूं लैके इन्हां तो वक्ख हो के बह गए।
1: बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी
0: इन्हां दा इन्ना स्टैंड नहीं, इन्हां इन्ना स्टैंड नहीं बनिया भी मैं इन्हां नूं ये कह सकां जिथे तुसी गलत है जी गलत है।
1: जी
0: इन्ने मैं कहना तुसी लाओ रोडवेज वाले जी,
1: जी
0: सफाई कर्मचारी मनरेगा वाले ला लो जी, तुसी
1: जी
0: बिजली महकमे वाले ला लो जी, फिर किसान ला लो मजदूर ला लो। इन्हां ने केड़ा बंदा ऐसा छड्डिया जी इन्हां दे
1: पटवारी
0: दांदा
1: होए ने
0: नहीं मान
1: पिछले
0: जी।
1: समा, पंगा पिया रहा जा, माल महकमा हो गया जी
0: हाँ
1: कई। बिल्कुल है
0: ते जिहड़े स्कूल च जाके बच्चे नूं कोट कर रहे हैं भी सिक्ख्या तंत्र बदले, अद्धे तां बच्चे उन्हां दे विच पढ़ते ने जिन्हां दे माँ प्यो ने कुटे नहीं,
1: बिल्कुल है।
0: ते पता नहीं उन्हां बच्चियां मूहरे केड़ा मुंह लैके पेश होए ने, मैनूं अज तक समझ च नहीं आती।
1: जी
0: ते साडी साडे बीबा जी इत्थे बैठे हूं तो एक दिन मीह पिया जी, तुसी
1: जी
0: जाके ना मतलब जीरकपुर दा हाल और मोहाली दा हाल देखियो,
1: जी
0: ओदे गड्डियां डुब पानी खड़ा हो गया सी एक दिन दे विच,
1: जी
0: कोई सीवरेज लाइन नहीं जी, कोई
1: जी
0: लेना नहीं कोई देना नहीं, मतलब ये तां मतलब सिर्फ एक दूजे नूं निंदण दी सियासत कर
1: निंदा
0: रहे
1: दी
0: ने, बादल
1: सियासत
0: ने कर ले जी,
1: जी
0: कांग्रेस ने कर लिया, अपनी इन्हां दी कोई उपलब्धि नहीं कोई अचीवमेंट नहीं, ना ये ना इन्हां ने हैगी है ना ये गिना सकदे ने।
1: बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी जी
0: हुण 1,000 रुपए वाली स्कीम चलाई सी वो भी कोर्ट ने बंद कर दिती।
1: करते जी, बिल्कुल है जी
0: हाँ मेरे मदर एड, चलो आपा ना की सुने ते यकीन नहीं करते कि आपा तो वही
1: जी
0: गल्ला कर रहे, साडे सामने बीती है। हुण साडी जिथे मदर एडमिट सी ओदे बिल्कुल सामने कोई डायबिटिक पेशेंट एडमिट सीगा,
1: जी
0: चलो जदों उन्हां नूं छुट्टी मिलनी सी उन्हां ने भगवंत मान नाल अपना कार्ड दित्ता भी ये कार्ड भी असीं चलाउणा है जी। ओदे विचों ना डॉक्टरां ने साफ जवाब दित्ता भी ये साडे नहीं चलदा, ये साडे खरड़ मोहाली चलदा ही नहीं जी किसी कोले जी। फिर
1: जी
0: दसो भी 10 लाख के कार्ड बना के तो बनने थोड़ा की मतलब
1: करना
0: मतलब
1: की
0: जो
1: उन्होंने,
0: चलने ही नहीं
1: बिल्कुल है जी
0: है ना जी। ओदे मतलब दुनिया ने मूर्ख बनाई जाना, झूठ दे
1: जी
0: कुफर दी गप्पा दी सियासत करी जानी हर वेले,
1: वो
0: ये कोई
1: तो
0: चंगी
1: बाई जी
0: गल्ला थोड़ी
1: विजिटिंग
0: है।
1: कार्ड होंगे ना, जिदा कि सान आ पता है एड्रेस चेते रखियो सानू, वो काम आ विजिटिंग कार्ड है जी
0: बिल्कुल
1: उदा,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल है जी
0: बिल्कुल वेस्टिंग कार्ड ही नहीं जी, हुण
1: जी
0: आ राशन कार्ड शुरू कर दिते भी
1: जी
0: अज दे युग दे विच जिहड़ा सारा कुछ
1: जी
0: ऑनलाइन हो रहा है, जां इहदे विच राशन कार्ड दी पुछण नूं की लोड़ पैगी तो
1: जी ऑनलाइन
0: मतलब
1: रजिस्ट्रेशन
0: ओहो
1: कराओ तुसी,
0: बंदा।
1: जिहड़ा जम्मदा बच्चा है जां कोई परिवारक मैंबर बिछड़ गया, चले गया दुनिया तो, आ सारा कुछ ऑनलाइन होवे जी, आ फिर SIR दा रोला ना।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरिया नू तू हमेशा याद रखी, नी मेरे बेले आबाद ना होवन तू अपने बेले आबाद रखी। जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होवन तो पहला मैनू दे के थोड़ा जहर जावी।

सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे चलिए ता एक कर्म कमानी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया हाँ दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया हाँ रा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

दिन रात मेहनत कर दे हां मजदूर पक्की सरकारा होन जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई ताइयों हक

0: कुछ कुछ उभरने शुरू हो जाते हैं कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अगे जाके की करने वाला है।
1: बिल्कुल
0: उस वेले बच्चा जिहड़ा है ते टीचर है, बच्चा है ते अध्यापक, वो एक तरह चौरस्ते च खड़े होंगे कि हुण आपां ने जे हुण नहीं सोचा फिर कुछ नहीं हो सकता। ये
1: बिल्कुल
0: पूरी जिंदगी का सवाल ही है। ये दो
1: बिल्कुल
0: विशेष तौर पर क्लासा
1: बिल्कुल
0: 9वीं 10वीं च, इतने बच्चे की ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लैवल से अपन जी सोचिए।
1: बच्चे नू इस स्टेज के उत्ते सपोर्ट ते मोटिवेशन दी बहुत ज़्यादा जरूरत होंगी हैगी। कुछ गल्ला इस तरह दी होंदी है, उदे चेंजेस शरीर से भी चेंजेस आ रहे होंगे, उदे
0: जी
1: माइंड भी
0: जी
1: वो
0: हाँ
1: शेप अप कर रहा होंगे कि मैं अगे की करना। इस वेले जे उन्हां दी कम्युनिकेशन गैप आ जावे अपने पेरेंट्स नाल या इनफैक्ट कई बार टीचर्स नाल, तां
0: जी
1: ओह्दे लई बड़ा नुकसानदायक हो सकदा हैगा। इस करके पेरेंट्स नू टीचर्स नू चाहिए बच्चों नाल उस वेले अपना कम्युनिकेशन जिहड़ा वो चंगी तरह बना के रखन, उन्होंने सपोर्ट देन, उन्होंने मोटिवेशन देन। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिना
0: जी जी जी
1: कि जो असं भी बच्चे होंगे सी, मैं मेरे भरा मेरे दोस्त, असं नॉर्मली ये गल सुनते होंगे कि टीचर्स या पेरेंट्स वेले कहते हैं कि ये तो जी क्रिटिकल स्टेज है 8वीं 9वीं 10वीं की,
0: जी जी
1: तुम
0: जी
1: ये 2-3 साल जो बोर्ड की क्लासा पार कर लोगे,
0: बिल्कुल
1: हूँ मेहनत कर लोगे, सारी उम्र तुम ऐश करोगे।
0: ये
1: जे
0: होंगे
1: हुण तुसी
0: होंगे
1: ऐश कर ली 2-3 साल दे, सारी उम्र तुहानू मतलब
0: फिर
1: दिहाड़ी करनी पैनी
0: दिहाड़ी फिर
1: है,
0: पछतावा ही
1: फिर
0: रहेगा।
1: पछतावा रहना है।
0: हाँ जी हाँ
1: असी
0: जी
1: सोचते हैं कि भाई बड़ी मतलब एक वधिया गल दसी, असी 2 साल मेहनत कर लेंगे, 9वीं 10वीं चलो चंगे नंबर आ जाते हैं,
0: बिल्कुल सही
1: फिर
0: गल
1: जो 11वीं च होंगे टीचर बदल जाते हैं, पेरेंट्स तो चलो उही गल रिपीट करते रहते हैं कि ये 11वीं 12वीं होर तुसी मेहनत कर लो,
0: है। हाँ
1: फिर
0: जी हाँ
1: सारी
0: जी
1: उम्र तुहाडे 60 साल जिहड़े
0: बिल्कुल
1: ऐश दे निकलणगे। असीं फिर सोच के मेहनत कर लेते हैं कि चलो 2 साल बोर्ड कर लेंगे
0: दो
1: मेहनत,
0: ऐड हो गए चलो
1: दो
0: कोई गल
1: और
0: नहीं।
1: है
0: हाँ
1: कोई बच्चा कर लेंदा मेहनत कर लेंदा, कोई डॉक्टर
0: जी
1: बन
0: हाँ जी
1: जाता है 12वीं 12वीं इंजीनियरिंग लाइन चला जाता है, कोई सर्विसेज वगैरह कितने चला जाता है,
0: हाँ जी हाँ
1: उस
0: जी
1: तो बाद तो फिर एक बार डॉक्टर बन ही गया फिर तो मेहनत करनी
0: फिर
1: पैनी
0: तो गड्डी ली ते आ गई है, फिर
1: फिर तो
0: तो
1: आ
0: जाना ही।
1: गया। उस तो बाद मतलब कहने की गल है कि किसी भी तरह नाल इस तरह की गल्ला नाल या कोई होर किसी मोटिवेशन नाल जे बच्चे नू आपा उस वेले सपोर्ट दे दिए, उन्हों आपा किसी तरह रीइंफोर्समेंट दे दिए, तो उसका सारा जो करियर है उस वेले शेप अप हो सकता है। तो उस वेले पेरेंट्स नू टीचर्स नू ये बहुत सोचने की लोड़ है कि किस तरह अपने बच्चों नू अपने अपने विद्यार्थियों नू किस तरह इस चंगी सपोर्ट दे सके।
0: बिल्कुल सही जी। ये तो यही एक तरह का कह लो कि क्रॉस रोड्स ने,
1: बिल्कुल
0: इन्हों के उत्ते ही सही ट्रैक पकड़न की लोड़ होंगी है। तो बड़ी वधिया गल तुसी कीती। वैसे तुसी डॉक्टर भी हो, हुण मैं जे निजी सवाल पूछा कि तुसी डॉक्टर हो MBBS हो फिर तुसी ट्रैक बदलते हो फिर तुसी सिविल सर्विस चाहते हो, ये किवें डॉक्टर बनने का ट्रैक किवें सी ते उस तो बाद जिहड़ा टर्न लिया वो किवें जिंदगी च आया?
1: डॉक्टर बनन दी जेड़ा सुपना सीगा वो एक्चुअली इस जड़ी मैं गल कह रहा सी मेरे पेरेंट्स नहीं सी, मेरा सुपना नहीं सीगा। जस्ट
0: जी
1: दैट कि
0: जी
1: उन्होंने ग्रूम इस तरह का किया कि पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे, अपने क्लास च पीछे वाली कतार च ना हो अगली कतार च रहे। 7वीं 8वीं तक यही चलता रहा, खेडों च भी ठीक सीगा,
0: हाँ जी
1: खेड
0: हाँ
1: कूद भी
0: जी
1: ठीक लेंदे सी।
0: ठीक है
1: जिहड़ी गल
0: ठीक
1: मैं आखी कि 8वीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड के पेपरों को बड़ा हवा बनाता, साढ़े टाइम से 8वीं बोर्ड की होंगी सी,
0: 8वीं बोर्ड की। हाँ जी हाँ
1: कहते जी
0: जी
1: बोर्ड का पेपर है तो ये तो चंगा तुम्हें करना ही करना, इस
0: ये
1: ज़्यादा
0: तो
1: कोई वो है ही नहीं, यदा हल ही नहीं
0: हाँ
1: हैगा।
0: जी हाँ जी
1: 8वीं से मेहनत की उदों ही गल्ला कही गया कि जी 8वीं पास कर लो फिर तुम्हें लैके जावे कितने, असं भी नाल
0: हाँ
1: करा,
0: वाह जी
1: हो
0: वाह
1: गई पास हो गई 8वीं संभव।
0: ठीक है
1: 9वीं अच्छा एक आदत शुरू तो पवाई कि पेपर रीडिंग नहीं, न्यूज़ पेपर तुम शुरू तो पढ़ते रहो, बुक्स वगैरह GK की बुक्स है या होर कोई कंप्लीट
0: अच्छा
1: डिस्क्रिप्शन की
0: अच्छा
1: बुक्स
0: जी
1: है, ये हमेशा आदत साढ़े घर से कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आती सी, पेपर साढ़े को 3 लैंग्वेज के आते
0: ये
1: आते
0: प्लस
1: सी।
0: पॉइंट्स
1: ये प्लस पॉइंट
0: बिल्कुल
1: एक ग्रूमिंग की जी मैं गल आ रहा
0: हाँ जी हाँ
1: सी
0: जी
1: कि
0: ठीक है
1: तिने तिने लैंग्वेज के पेपर साढ़े घर से आते सी, हिंदी
0: जी।
1: पंजाबी इंग्लिश तिने शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते हो। तो फिर 9th 10th होया तो बायो च इंट्रस्ट चला गया कि चलो ठीक है बायो पढ़ के वेख लेंगे। 10th के जो क्लियर होया तो आई हैड प्रिपेयर माई माइंड कि बायो लेनी है कि डॉक्टर जरा है बनना है, किसी ने थोपिया नहीं,
0: अच्छा अच्छा
1: सपना
0: ठीक है ठीक
1: पेरेंट्स
0: है।
1: का सीगा पर उदों थोपिया नहीं गया कि तुसी बनना है, उदों तक माइंड
0: आप
1: बन
0: ही
1: गया
0: तुसी सोच
1: बिल्कुल
0: अपना इन्हों अपना सपना बना लिया
1: बिल्कुल
0: ठीक
1: कि बनना हैगा, मेडिकल ले
0: जी
1: ली,
0: जी जी
1: नाल थोड़ा मैथ से इंटरेस्ट सी, नॉन मेडिकल वैसे ऑप्शनल रख ली,
0: हाँ क्या
1: उदों
0: बता, मतलब तुसी ट्रैक छड्डिया कोई नहीं दोनों भी नाल ही रखे।
1: उन्होंने दिनों जो जे मेरे फ्रेंड से वो NDA का पेपर देने जा रहे थे,
0: हाँ जी हाँ
1: मैं
0: जी
1: कहा
0: ठीक
1: कि चलो पता नहीं डॉक्टर बनाएंगे नहीं बनाएंगे,
0: ठीक हाँ जी
1: पेपर दे चुके थे कि NDA का पेपर भी देने चले गए।
0: हाँ जी
1: रब दी मेहर से तुम्हें जड़े हैं उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, डॉक्टरी का क्लियर हो गया।
0: क्या
1: उस
0: बता
1: वेले मतलब चीज़ां वही हैं कि जरूरी नहीं कि तुम दोवें एक साथ
0: सही
1: टेकअप
0: ट्रैक पे
1: करो,
0: जा रहे थे तुसी।
1: बट तुसी जड़ा बच्चा उस स्टेज से होंगे 11वीं 12वीं की, वो सामने ये ऑप्शन

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।